0: एवं रेडीमेड कपड़ा में शॉर्टिंग सुटिंग सुट पीस कुर्ता सुरुवाल जरीवाल साड़ी ब्लाउज को कपड़ा संगे कन्ना सिरक दसना सिरानी सुपथ मूल्य में पाइन प्रोप राइटर बिंतीराम राजभन रुक्मिणी वस्त्रालय भूरी गांव बजार बर्दिया देवीराम चौक देखि त्रिभुवन स्कूल जाने बाचो संपर्क मोबाइल नंबर 9861806393।
1: यो हो रेडियो टाइगर 99.2 MHz।
2: लो आयो क्या आयो क्या आयो होइन बाघै आयो चाहिँ लो आयो आयो भन्दैछौ त के आयो
3: हो त नि।

सिरिन ठुलो साँझ हाम्रो माया बिहानीमा कुरा गर्दै रक्का टोली एउटै सिरानीमा बाडुल्की लाउन।